0: अनन्ते मुए हो मैं अनना लोकाते पतिगान
1: माते
0: ने मंगा विदा हरा लंगा उना मन्ना
1: जेवे
0: ने कन्ना लो हो मैं दा उई काते
1: पतिगान माते
0: ना बिन ने यों दो आंदा अम जाम मालान अवी उरिक बाया
1: काते
0: जंदे सायो अनला नाला